0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो
0: मार मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो